नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं 90.8 FM रेडियो मन भावन पर कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कई बार हम अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी सांप जैसी दिखाई देती हैं। हम डर जाते हैं, भागते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई हाथ में टॉर्च लेकर आता है और रोशनी उस रस्सी पर पड़ती हैं, हमारा डर गायब हो जाता है। हम हंसने लगते हैं कि अरे, यह तो सिर्फ एक रस्सी थी। कबीर साहब हमारे मन के इसी अंधेरे की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यह दुनिया भी वैसी ही है, जो है नहीं वो दिख रहा है और जो है उसे हम देख नहीं पा रहे हैं। आज का दोहा हमें सिखाएगा कि कैसे अपनी नज़र को साफ करके हम इस भ्रम से बाहर निकल सकते हैं। आइए सुनते हैं कबीर की यह वाणी। कबीर देखत देखत जग गया, देखी न सकिया कोई। कबीर देखे ता देखिए, जो कबीर सा होई।

0: देखी न सक्या कोय, कबीर देखत देखत जग गया। देखी न सक्या कोय, कबीर देखे ता देखिए, जो कबीर सा होए रे साधो, जो कबीर सा होए। श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, कबीर देखत देखत जग गया। पूरी दुनिया अपनी इन आँखों से इस संसार को देख रही हैं, लेकिन देख ही न सक्या कोई। कबीर कहते हैं कि असलियत को कोई नहीं देख पाया, सबने सिर्फ ऊपरी रंग रूप देखा, किसी ने उस भीतर छिपे सत्य को नहीं पहचाना जो इन सब चीज़ों के पीछे हैं। अगली पंक्ति में बड़ी गहरी बात करते हैं, कबीर देखें ता देखिए। कबीर जो देख पा रहे हैं, यानी वह जो परम सत्य हैं, वह तभी दिखाई दे सकता है जो कबीर सा होए। यानी जब तक आप में कबीर जैसी सादगी, कबीर जैसा वैराग्य और कबीर जैसी निष्पक्षता नहीं आएगी, तब तक आप सत्य को नहीं देख पाएंगे। इसे ऐसे समझिए जैसे एक गंदा चश्मा पहनकर हम साफ दुनिया नहीं देख सकते। कबीर कह रहे हैं कि अगर उस मालिक को देखना है तो पहले अपनी आँखों से अहंकार और पक्षपात का चश्मा उतारना होगा। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी सोच पर गौर कीजिए। हम क्या देख रहे हैं? हम दूसरों में बुराइयाँ देख रहे हैं? हम दुनिया में कमियाँ देख रहे हैं? हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो हमारी आँखों के सामने पेश किया जा रहा है? आज कोशिश कीजिए भीतर झांकने की। कबीर होने का मतलब है भीतर से साफ होना। जब आप खुद को साफ कर लेते हैं तो पूरी दुनिया आपको परमात्मा का रूप दिखने लगती है। आज अपनी नज़र बदलिए ताकि नज़ारा बदल सकें। याद रखिए, जो सच है उसे आँखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: करिअरची योग्य सुरुवात म्हणजेच उज्ज्वल भविष्याची पहाट, म्हणून आता आपल्या करिअरची योग्य सुरुवात करा KC इज ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च च्या विविध करिअर ओरिएंटेड कोर्सेसनी।
2: MBA, MCA सारखे PG कोर्सेस तसेच MCA इंटिग्रेटेड BBA, MBA, BMS, BCA सारखे UG कोर्सेस साठी प्रवेश सुरू, सोबतच 100% ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट असिस्टन्स। उत्तर महाराष्ट्रातील बेस्ट इन्स्टिट्यूट अवॉर्ड ने सन्मानित कॉलेज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, जिल्हा उद्योग केंद्रा मागे जळगाव।

0: Azdıran Kiyo.
1: अरे भाई नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? अरे आप हंसी तरंग सुनिए।
2: अच्छा तू मला एक संग तो स्वर अनंत केंद्रावर ऐकत जा हास्य तरंग।
3: मैं काय म्हणतो हास्य तरंग स्वर अनंत केंद्रावर हास्य तरंग।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं अभय चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप कोच, और मेरे साथ बैठे हैं मेरे सहयोगी
1: राजन बाजी। मैं आपके साथ हूं अभी इस प्रोग्राम में।
0: दोस्तों, इस बार हम फिर से एक नया सीरीज हम लेके आए हैं और उस प्रोग्राम का टाइटल है MBA द डिफरेंशिएटर। और 96% ऑफ द एम्प्लॉयर सेड हायरिंग MBA क्रिएट वैल्यू फॉर देयर कंपनीज। तो हम इस सीरीज में अभी बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। आज की डेट में बहुत हॉट टॉपिक है कि मुझे MBA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा बाजी सर, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दीजिए जो हमें पहली बार सुन रहे होंगे रेडियो पे।
1: सर, मेरा इंट्रोडक्शन फिर एक बार मैं देता हूँ। मेरा MBA हुआ है और एडिशनली मेरा इंजीनियरिंग का डिग्री है, और मेरा 25 साल का भी एक कॉर्पोरेट लाइफ में एक्सपीरियंस हो चुका है, एंड आई एम हेडिंग अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इन अ प्राइवेट कंपनी राइट नाउ।
0: जो सुनने वाले उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ दो तीन शब्दों में। मेरा भी कॉर्पोरेट में जो एक्सपीरियंस है, 18 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, और मैं 3 साल एंटरप्रेन्योर भी रह चुका हूँ, और अभी मैं ऐसे फ्रीलांसर में जाके कॉर्पोरेट्स में और बी स्कूल्स में वर्कशॉप्स लेता हूँ, और उसके अलावा मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी भी काम करता हूँ। अब सबसे पहले आता है कि रीजन टू स्टार्ट दिस सीरीज MBA द डिफरेंशिएटर, ये बाजी सर और मैंने ये क्यों सोचा और इस चीज को क्यों हम सोचे, उस बारे में हम थोड़ा सा एक जो हम सुन रहे हैं, हमारे श्रोता हैं, दोस्त हैं, वो सुन ले, ध्यान से सुन ले कि उसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये होता है कि जैसे कोई भी बी करे चाहे बी कॉम करे, यानी किसी भी स्ट्रीम में कोई ग्रेजुएशन करता है, तो दो चीज दिमाग में आने लगती

0: होती है उस स्टूडेंट के दिमाग में बाजी सर।
1: हाँ जी,
0: पहला वो सोचता है कि आगे मैं कोई फर्दर एजुकेशन में करूं या नहीं करूं, या सीधा दूसरा ऑप्शन आता है कि मैं कहीं जॉब में ले लूं। आपका क्या विचार है इसमें?
1: राइट, अभी सर मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा तो ये अनुभव रहा है कि अभी आज के जो स्टूडेंट है वो ग्रेजुएशन के बाद डेफिनेटली हायर एजुकेशन का सोचते ही है और करते ही है
0: जी,
1: क्योंकि वो आज के वक्त की डिमांड है।
0: जी जी,
1: इट्स अ क्वाइट कॉमन फिनोमेना एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अभी ग्रेजुएशन के बाद क्या करें।
0: राइट राइट, तो उसमें एक दो सेंटेंस में और बोल देता हूं कि दोस्तों जो हमको सुन रहे हैं आप ध्यान से सुनिए, आप अगर इस दुविधा में फंसे हैं, अगर आप सोच रहे हो कि क्या करना है मुझे, जॉब करूं या आगे की मैं पढ़ाई करूं, अगर मुझे पढ़ाई करना है, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मुझे MBA करना चाहिए, मैनेजमेंट कोर्स करना चाहिए, तो उस दुविधा को इस सीरीज में हम पूरी तरह से आपका सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम। जी बाजी सर, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से?
1: 100% सर, 100%।
0: जी, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अभी सबसे पहला एक टॉपिक है जिसको हम आगे लेके बढ़ेंगे, व्हाई टू डू MBA। इसके 5 रीजंस हैं और इस 5 रीजंस को मैं और बाजी सर आज हम उसको डिस्कस करेंगे, जो हमारे लिसनर हैं उस चीज को पूरी तरह से अच्छे से डिस्कस करेंगे, व्हाई टू डू MBA 5 रीजंस।
1: राइट बाजी सर? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली
0: जी।
1: इसमें मैं चालू करता हूं सर।
0: जी,
1: पहला मतलब इज वेरी कॉमन क्वेश्चन कि प्रोफेशनल और स्पेशलाइज डिग्री ये जो हम लोग ले रहे
0: जी,
1: तो इसका क्या इम्पैक्ट है और क्या बेनिफिट है?
0: राइट,
1: तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ सर।
0: जी जी,
1: जैसे आप देख रहे हैं नाउ टाइम हैज चेंज ड्रास्टिकली, है ना, द एंटायर इंडस्ट्री इज वेरी डायनामिक नाउ,
0: राइट,
1: एज कम्पेयर टू 20 years बैक
0: जी,
1: और आज का हम लोग यदि देखे
0: जी,
1: और दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं तो आज का समय काफी बदल चुका है।
0: जी जी जी,
1: पहले जैसा अभी नहीं रहा है, बहुत सारी चीजें नहीं रही है और टाइम हैज बिकम वेरी फास्ट।
0: राइट राइट,
1: एंड हर चीज फास्ट हो गई है
0: जी,
1: एंड कंपनी आल्सो हैव टू यू नो डिलीवर द रिजल्ट वेरी फास्ट।
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली,
1: तो इसका इम्पैक्ट अभी एम्प्लॉय पे क्या आया है
0: जी,
1: है ना, तो एम्प्लॉय हैज टू डिलीवर रिजल्ट वेरी फास्ट।
0: करेक्ट करेक्ट, सही कह रहे हैं।
1: तो अभी हम लोग अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। अभी अपने जो श्रोता है वो जो नए मतलब फ्रेश ग्रेजुएट होके है ना, दे आर प्लानिंग देयर करियर
0: जी जी,
1: है ना, और वो सोच रहे कि मुझे आगे क्या करना चाहिए
0: जी,
1: है ना
0: जी।
1: तो MBA इसलिए भी करना चाहिए कि दिस प्रोफेशनल डिग्री एड्स वैल्यू, आपके नॉलेज में वो एक वैल्यू एडिशन करता है
0: जी, जी।
1: और कंपनी या फिर कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखे
0: जी,
1: तो कंपनी लुक एट द थिंग्स लाइक यू नो इफ समबडी हैज टू डिलीवर द रिजल्ट फास्ट, ही नीड टू हैव सम बैकग्राउंड, सम प्री नॉलेज।
0: राइट राइट राइट राइट,
1: तो MBA जो है इट गिव्स वेरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज।
0: राइट राइट राइट,
1: जैसे कोई फाइनेंस करता है MBA फाइनेंस, तो इट गिव्स द स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट द फाइनेंस,
0: करेक्ट,
1: फाइनेंशियल मैनेजमेंट
0: जी जी।
1: कोई MBA मार्केटिंग करता है तो इट गिव्स वेरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट द मार्केटिंग,
0: एब्सोल्युटली राइट,
1: लाइक दैट। तो ये एंड इफ समबडी हैज सम प्री नॉलेज, वो फास्ट ग्राफ्स करता है और रिजल्ट भी डिलीवरी फास्ट करता है
0: जी जी, बिल्कुल
1: एज कम्पेयर टू ओनली ग्रेजुएट।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा बाजी सर ने, बहुत इम्पोर्टेंट चीज को टच किया हुआ है। प्रोफेशनल डिग्री है ये, स्पेशलाइज डिग्री है और स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड डिग्री है जिसकी आपकी नॉलेज बढ़ती है। बाजी सर सही कहा,
1: सही एकदम 100% सही।
0: अब दूसरा पॉइंट जो है मैं टच करता हूँ उसमें है, दूसरा पॉइंट होता है हाई एम्प्लॉयमेंट रेट। हाई एम्प्लॉयमेंट रेट मतलब ये होता है कि अगर आप MBA करते हैं, मैं एक सिनेरियो ले लेता हूँ, है ना, जैसे बाजी सर और मैंने, और मेरा एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मैं 18 साल कॉर्पोरेट में किया, उसके बाद हजारों लोगों को रिक्रूट भी किया, इंटरव्यू भी लिए। अब उस चीज पे आते हैं कि हाई एम्प्लॉयमेंट रेट होती क्या है। अगर मुझे बंदा कोई अगर मुझे चाहिए रिक्रूट करना है, उनका ग्रेजुएशन लेवल अगर एक ही है, दोनों ने एक ही ग्रेजुएशन किया है, लेट अस से फॉर एन एग्जांपल BE किया हुआ है, और दोनों के मार्क्स जो एकेडमिक्स भी परसेंटेज वाइज भी सेम है, अब लें किसको, ये बड़ी दुविधा हो जाती। इंटरव्यू भी दोनों का अच्छा गया है, दोनों पैरेलल है, अभी मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, पर उसमें से अगर एक कैंडिडेट, उसमें से अगर उसके पास में अगर MBA की अगर उसकी डिग्री अगर एडिशनल होगी तो ही स्कोर्स और शी स्कोर्स द पॉइंट।
1: राइट राइट,
0: तो हाई एम्प्लॉयमेंट रेट में तो है कि जो आपकी एंट्री लेवल होती है, जो जिसे कहेंगे शॉर्टलिस्टिंग ऑफ रिज्यूम हो जाता है या पहला जॉब हो जाता है, उसमें आपकी बहुत जबरदस्त मदद करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप केवल BE करके जा रहे हैं जॉब के लिए, आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट होगा, पर साथ में अगर आपका MBA भी है तो आपकी जो परसेंटेज है बहुत हाई परसेंटेज बढ़ जाते हैं कि आपका शॉर्टलिस्ट होगा और आप अपॉइंट किए जाओगे।
1: इसमें मैं एक थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ सर
0: जी।
1: एक 20 साल पहले द पीपल हु वेर ऑप्टिंग फॉर दी पोस्ट ग्रेजुएशन
0: करेक्ट
1: है ना, तो 20% के आसपास है ना, एंटायर कैटेगरी में 20% लोग है ना पोस्ट

0: बिल्कुल सही.
1: इफ यू आर नॉट इन 60-65%, इफ यू आर इन 45%, देन डेफिनेटली इट रिड्यूसेस योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी.
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. एंड इन नटशेल ये होता है कि अगर आप एमबीए करते हैं तो आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, एम्प्लॉयबिलिटी ध्यान में रखिए दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा परसेंटेज से बढ़ जाती है. तो नेक्स्ट हम पॉइंट पे जाते हैं भाजी सर.
1: हाँ जी
0: जी. तीसरा पॉइंट आता है लर्निंग इन प्रैक्टिस. अब इसमें दोस्तों हम इस बात को शेयर करेंगे, हम बहुत अच्छे से इसलिए शेयर कर सकते हैं कि जैसे बाजी सर ने बताया एमबीए है, मैंने भी एमबीए किया हुआ है ग्रेजुएशन के बाद. अब उसमें सीखने को क्या मिलता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, खासकर एमबीए में.
1: राइट.
0: ग्रेजुएशन होता है जो 90% जो भी ग्रेजुएशन एकेडमिक कोर्सेस हैं वो प्योरली थ्योरेटिकल है. आप इत्तेफाक रखते हैं भाजी?
1: 100%
0: प्योरली थ्योरेटिकल है. अब एमबीए में ऐसा होता है कि उसमें जो है आपको प्रैक्टिस किया जाता है, जो सिनेरियो दिए जाते हैं, रियल सिनेरियो दिए जाते हैं, ऑन जॉब आपकी प्रैक्टिस होती है और आपकी स्किल्स जो है डेवलप होती है.
1: राइट.
0: अब जो सुन रहे वो सोच रहे होंगे कि कैसे. अभी मैं एग्जांपल दे देता हूं. जैसे आप ले लेंगे, फॉर एन एग्जांपल मैं कोट करता हूं, आईआईएम्स जो होते हैं कॉलेज जो एमबीए कराते हैं, वो एक साल में कम से कम 400-425 आपको असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स देते हैं एक साल में, एक एकेडमिक ईयर में.
1: Right.
0: और उससे नीचे वाले 20 स्कूल्स में आप अगर आएंगे तो 200-250 प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स आपको पर ईयर होती है.
1: Right.
0: तो उसमें जो सीखने मिलता है, मतलब लर्निंग मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं सीख रहे हैं, इस वाइस वर्सा. आपके क्या विचार है बाजी सर?
1: एमबीए पर्टिकुलरली हम लोग बात करें सर, तो एमबीए में एक रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला स्किल आपको मिलता है.
0: एब्सोल्युटली.
1: एक रियल प्रॉब्लम पे या फिर रियल केस स्टडी पे आपको
0: Correct.
1: है ना स्टडी करने के लिए मिलता है.
0: राइट.
1: एंड व्हिच इज रिलेवेंट विद द करंट सिनेरियो
0: एज
1: वेल एट करंट बिजनेस कंडीशंस.
0: जी जी.
1: सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट व्हेन वी यू गेट इनटू द यू नो मार्केट, व्हेन यू गेट इनटू द एक्चुअल जॉब.
0: जी.
1: तो ये आपका करंट सिनेरियो वाला नॉलेज बहुत फायदेमंद या फिर यूजफुल साबित होता है.
0: जी जी. और उसमें एक और ऐड करना चाहेंगे कि कॉर्पोरेट को ऐसे ही कैंडिडेट चाहिए जिनको रिलेवेंट सिनेरियो का एक्सपीरियंस है और उसको थोड़ा बहुत हैंडल कर चुके हैं.
1: Exactly.
0: जो आपको एमबीए करने से ही आपको मिलता है.
1: 100%.
0: जी. तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं बाजी सर.
1: हाँ जी.
0: तो चौथा पॉइंट है, फर्ज करो कि सिनेरियो कि आप जॉब कर रहे हैं कहीं और ज्वाइन कर लिया, आपका पहला ही जॉब है.
1: राइट.
0: तो उसमें चौथा पॉइंट आता है प्रिफर्ड फॉर प्रमोशन. प्रिफर्ड फॉर प्रमोशन अभी हम उसको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएंगे क्योंकि हम दोनों ने कॉर्पोरेट में अगर दोनों का एक्सपीरियंस जोड़ लेंगे तो 40 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है.
1: राइट.
0: शुरुआत के 4-5 साल जो आपका कॉर्पोरेट का लाइफ होता है, आप ऐसे इंडिविजुअल परफॉर्मर काम करते हैं. इंडिविजुअल मतलब सिंगल आप रहते हैं, किसी को रिपोर्ट करेंगे.
1: Right.
0: और आपका बॉस एक रहेगा.
1: Right.
0: ये ऐसे एक स्ट्रक्चर होती है, हायरार्की होती है.
1: Right.
0: अब 4-5 साल के बाद टेंटेटिवली आप डेफिनेटली ग्रो होने वाले हो.
1: राइट.
0: यानी कॉर्पोरेट लाइफ में आप ग्रो होगे.
1: राइट.
0: तो आपको उसके बाद नेक्स्ट आता है जो हायरार्की थी, सबसे बेसिक लेवल उसकी नेक्स्ट हायरार्की आएगी, टीम हैंडलिंग.
1: राइट.
0: हो सकता है 2 लोग या 3 लोग आपका टीम हैंडलिंग आएगी. वहां पे आपका एमबीए ही काम आने वाला है. आपका क्या कहना है भाजी?
1: 100% जैसे हम लोग अभी प्रमोशन की बात करें.
0: जी.
1: है ना, तो एमबीए का इम्पैक्ट आपके प्रमोशन पे 100% आता ही है.
0: जी.
1: ठीक है. तो जैसे आपने बताया.
0: जी.
1: आपके कलीग का यदि डिग्री नहीं है.
0: जी.
1: तो देन यू विल बी एट बेटर पोजिशन.
0: राइट.
1: दूसरा, मैनेजमेंट या फिर कंपनी इस तरीके से इसको देखती है.
0: जी.
1: कि दिस पर्सन हैज एडिशनल स्किल एंड नॉलेज.
0: एग्जैक्टली.
1: एडिशनल स्किल एंड नॉलेज जो पर्टिकुलर मैनेजमेंट लेवल पे चाहिए.
0: जी जी जी.
1: तो ये हम लोग मैनेजमेंट की ही पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं.
0: एब्सोल्युटली.
1: तो इसमें मैनेजमेंट का जो वैल्यू एडिशन होता है वो 100% प्रमोशन के लिए है ना कंपनी प्रेफरेंस देता
0: है, प्रेफर करती है. बिल्कुल सही है. तो एक रियल टाइम अगर सिनेरियो भी ले लेते हैं, अगर आपके पास प्रमोट करने के लिए अगर कॉर्पोरेट में जगह आपके बॉस के पास केवल एक ही जगह है और आप अपने किसी एक कलीग है उससे आप कम्पीट कर रहे हैं, दोनों का परफॉर्मेंस सेम है. पर अभी बॉस अगर सोचेगा कि अभी किसे प्रमोट करूं मैं, तो जिस कैंडिडेट के पास अगर एमबीए का एडिशनल क्वालिफिकेशन होगा 100% ही विल गेट द प्रमोशन. उसके पीछे जैसे बाजी सर ने बताया तो उसमें एक और एडिशन कर दूंगा क्योंकि मैनेजमेंट का जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है वो 2 साल में थोड़ा बहुत वो लेके आया है. तो ही कुड बी अ बेटर पीपल मैनेजर. वो हो सकता है क्योंकि मैनेजमेंट का उसको 2 साल की पढ़ाई करके एक्सपीरियंस लेके आया हुआ है.
1: अभी एमबीए हमने क्यों करना चाहिए, इसका 5th रीजन है, नेटवर्किंग आपका बेटर होता है.
0: ओके.
1: है ना.
0: ओके. जी.
1: जैसे
0: जी.
1: आपके कलीग्स जो है एमबीए कॉलेज होने के बाद दे गेट

0: प्लेस इन बेटर है ना कॉर्पोरेट्स, कुछ लोग अच्छी जगह पे प्लेस होते हैं, कुछ लोग है ना ऑन एन एवरेज कॉर्पोरेट में प्लेस हो जाते हैं। सो एट ए टाइम यू गेट फीडबैक एंड नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स।
1: राइट सही का। तो अभी आप बताइए जी, उसमें नेटवर्किंग में देखिए मैं उसको थोड़ा सा काफी क्लोजली मैं देख चुका हूं मैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि मैं जैसे विजिटिंग फैकल्टी जाता हूं तो कुछ 20 स्कूल्स में जाता हूं मैं, तो वहां पे लोगों का जो उसे रहता है वहां से मुझे समझ में आता है। मोस्ट ऑफ द प्लेसमेंट जो होती है 20 स्कूल्स में जो प्लेसमेंट होती है एल्यूमिनी पे काफी करियर की बेस्ड होती है, जो आपके पहले जो आपके सीनियर थे
0: right.
1: वो कहाँ पे जाके कहाँ जॉब कर रहे हैं
0: right.
1: और एक बहुत एक इंटरनल फीलिंग भी होती है कि मेरे कॉलेज का स्टूडेंट है या मेरे कॉलेज का है, अगर कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहेगी तो मैं पहला प्रेफरेंस ऐसा ही होता है कि भाई नॉर्मली होता है कि मैं मेरे कॉलेज का है तो इसे रिलेशन बनता है तो उसको मैं अपॉर्चुनिटी मिलती है
0: अपॉर्चुनिटी दूं
1: कि उसको जॉब मिलेगा
0: right,
1: पहला
0: right.
1: चीज ये हो जाता है। फर्ज करो अगर आप कहीं छोड़ के चले जाते हैं, कहीं कॉलेज छूटने के बाद आप कहीं दूसरी जगह जॉब कर लेते हैं, पर जो आपकी जो क्लासमेट होते हैं एक बैच में अंदाजन पकड़ के चलिए 100 से 120 लोग होते हैं और सारे के सारे 120 लोग कॉर्पोरेट में अपना करियर बनाने वाले हैं
0: right.
1: और कहीं ना कहीं जॉब करते रहेंगे
0: Correct.
1: और कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं तो फिर आपकी नेटवर्किंग आपकी पहले से रहती है। आपका क्या कहना है?
0: सही बात है सर, तो वो नेटवर्किंग जो है वो एंटायर करियर में अपने को बेनिफिट देता ही है। एल्यूमनी नेटवर्किंग जिसको हम लोग
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोस्तों 5 रीजंस व्हाई टू डू एमबीए आज हम लोगों ने इसको टच कर लिया है, आज के लिए इतना ही। हम अगले एपिसोड में हम टच करने वाले हैं वेयर टू डू MBA। ध्यान में रखिए, आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वेयर टू डू MBA बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आपको पूरी तरह से, मैं अभय चौहान मोटिवेशनल स्पीकर लीडरशिप कोच और मेरे सहयोगी
0: राजन बाजी आपकी यहीं पे अभी विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू वेरी मच।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं 90.8 FM रेडियो मन भावन पर कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कई बार हम अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी सांप जैसी दिखाई देती हैं। हम डर जाते हैं, भागते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई हाथ में टॉर्च लेकर आता है और रोशनी उस रस्सी पर पड़ती है, हमारा डर गायब हो जाता है। हम हंसने लगते हैं कि अरे, यह तो सिर्फ एक रस्सी थी। कबीर साहब हमारे मन के इसी अंधेरे की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यह दुनिया भी वैसी ही है, जो है नहीं वो दिख रहा है और जो है उसे हम देख नहीं पा रहे हैं। आज का दोहा हमें सिखाएगा कि कैसे अपनी नज़र को साफ करके हम इस भ्रम से बाहर निकल सकते हैं। आइए सुनते हैं कबीर की हवाणी। कबीर देखत देखत जग गया, देखे न सकिया कोई। कबीर देखे ता देखिए, जो कबीर सा होई। कबीर देखत देखत जग गया, देखी न सक्या कोई। कबीर देखत देखत जग गया,

साधो जो कबीर सा हो। श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, कबीर देखत देखत जग गया। पूरी दुनिया अपनी इन आँखों से इस संसार को देख रही हैं, लेकिन देख ही न सका कोई। कबीर कहते हैं कि असलियत को कोई नहीं देख पाया, सबने सिर्फ ऊपरी रंग रूप देखा, किसी ने उस भीतर छिपे सत्य को नहीं पहचाना जो इन सब चीज़ों के पीछे हैं। अगली पंक्ति में बड़ी गहरी बात करते हैं, कबीर देखें ता देखिए। कबीर जो देख पा रहे हैं, यानी वह जो परम सत्य हैं, वह तभी दिखाई दे सकता है जो कबीर सा होए। यानी जब तक आप में कबीर जैसी सादगी, कबीर जैसा वैराग्य और कबीर जैसी निष्पक्षता नहीं आएगी, तब तक आप सत्य को नहीं देख पाएंगे। इसे ऐसे समझिए जैसे एक गंदा चश्मा पहनकर हम साफ दुनिया नहीं देख सकते। कबीर कह रहे हैं कि अगर उस माली को देखना है तो पहले अपनी आँखों से अहंकार और पक्षपात का चश्मा उतारना होगा। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी सोच पर गौर कीजिए। हम क्या देख रहे हैं? हम दूसरों में बुराइयाँ देख रहे हैं? हम दुनिया में कमियाँ देख रहे हैं? हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो हमारी आँखों के सामने पेश किया जा रहा है? आज कोशिश

0: कीजिए भीतर झांकने की। कबीर होने का मतलब है भीतर से साफ होना। जब आप खुद को साफ कर लेते हैं तो पूरी दुनिया आपको परमात्मा का रूप दिखने लगती है। आज अपनी नज़र बदलिए ताकि नज़रा बदल सकें। याद रखिए, जो सच है उसे आँखों से नहीं आत्मा से देखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: करिअरची योग्य सुरुवात म्हणजेच उज्ज्वल भविष्याची पहाट, म्हणून आता आपल्या करिअरची योग्य सुरुवात करा KCE's ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्चच्या विविध करिअर ओरिएंटेड कोर्सेसनी।
2: MBA, MCA सारखे PG कोर्सेस तसेच MCA इंटिग्रेटेड BBA, MBA, BMS, BCA सारखे UG कोर्सेससाठी प्रवेश सुरू, सोबतच 100% ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट असिस्टन्स। उत्तर महाराष्ट्रातील बेस्ट इन्स्टिट्यूट अवॉर्ड ने सन्मानित कॉलेज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, जिल्हा उद्योग केंद्रामागे जळगाव।

0: 하수들은 쉬어.
1: अरे भाई नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? अरे आप हंसी तरंग सुनिए।
2: आता तू मला एकच सांगतो, स्वर अनंत केंद्रावर ऐकत जा हास्य तरंग।
3: मी काय म्हणतो, हास्य तरंग स्वर अनंत केंद्रावर हास्य तरंग।